गुरमुख सतगुरु दे सन्मुख रहण वाले जीवन जिउंदिआं भी प्रवान ने हजूर दी दरगाह विच कबूल ने ते जदों शरीर छड़ जांदे ने ते फिर भी प्रवान ने माता दी कुखों मनुख जन्म लैंदा है पर गुरमुख सतसंगत दी कुखों जन्म लैंदा सतसंगत दी कुखों जन्म लैके जो गुरु दी दित्ती हुई तरतीब विच गुरु दे दसे हुए नेम विच अपना जीवन बिताउंदा है उसनू गुरमुख कहिंदे ने जो गुरु दे सन्मुख रहिंदा है। जीवन विच भी सुगंधियां वंडदे रहे जीवन विच भी खेड़े वंडदे रहे क्योंकि गुरमुख दी टेक नाम है गुरमुख दा आसरा नाम है गुरमुख परमात्मा दे गुणा दी सुगंधी वंडदा है खुशबू वंडदा है ए गुरमुख दा दान है गुरमुख नाम दे आसरे अपनी मत नूं अपने मन नूं निर्मल रखदा है ए इशनान है गुरमुख नाम दान इशनान गुरमुख ने जीवन विच परमेश्वर दे गुणा दी सुगंधी वंडी नाम दी टेक रख कोई समासी किसे पासों सुगंधी आ रही सी किसे ने आके पुछया तेरे पासों सुगंधी आ रही बड़ी महक है तेरे कोल की वस्तु है जिस वस्तु करके सुगंधी आ रही जिस पासों सुगंधी आ रही सी उसने कहा मेरे पास गुलाब दा फूल है उसने गुलाब दा फूल दिखाया वेखण वाले ने वेखे।

बंसरी बजदी बजाउण वाला बंसरी बजाउंदा है वजाई जांदा बंसरी वजी जांदी बजाउण वाला वजाई जा रहा है बजाउण वाले नु बजाउंदियां बजाउंदियां ना ता खाण दी भुख ना कोई प्यास दिखाई देंदी ना पता चलता इसने आराम भी करना बंसरी वजदी जा रही वजाउण वाला वजाई जा रहा पर यूं लगता हुण तां बंसरी वजाउण वाले नूं वजाउण लग पई सतनाम श्री वजाउण वाला बंसरी विच ही गवाच गया वाजा वजाउण वाला वाजा वजाउंदा सी वजाउंदियां वजाउंदियां उह लग्या हुण तां वाजा वजाउण वाले नूं वजाउण लग पिया वजाउण वाला गवाच गया कोई शब्द का अभ्यास करता सी गुरु दे दिते गुरमंत्र का अभ्यास करता सी कोई गुरु दे दिते हुए शब्द का अभ्यास करता सी करदा ही गया करदा ही गया करदा ही गया इउं लग्या हुण तां शब्द अभ्यासी नूं अभ्यास कराउण लग पिया जब सतनाम श्री वाई ओ अभ्यास करन वाला गुर शब्द विच ही गवाच गया समा गया अभ्यास करन वाला जीरो बन गया अभ्यास करन वाले दी मैं मर गई जिस दी मैं मर जाए वो तो कदे नहीं मरदा तो पु सतनाम श्री मरदे ओ ने जिन्हां दी जीवन विच मैं नहीं मरी वो तो जीवंदा ही मर जांदे ते जिन्हां ने जीवन विच गुर शब्द का अभ्यास करके जिन्हां दे जीवन शब्द ने अभ्यासी नूं अभ्यास ते लगा के उन्हां दी मैं मार दित्ती ओ मुड़ के कदे नहीं मरे शब्द मरो फिर जीव सद ही बहुर मरन ना कोई अज सतगुरु ओही गल कह रहे जेड़े गुरु दे शब्द विच समा गए उन्हां नूं मरिया होया ना आखना जब सतनाम श्री कदे भुल के भी किसे गुरमुख नूं ना कहना कि गुरमुख मर गया मरदे ने मनमुख जपो सतनाम श्री वाहिगुरु गुरमुख नहीं मरदे मरदे ने

माली दी नजर भी नहीं। आप हुजरे बूटे उग पेंदे, एक दूसरे दे अंदर इस तरह फस जांदे ने, रस्ते दे राह भी रोक लेंदे ने, जंगल दे राह भी रोक लेंदे। इस तरह बेतरतीबे बूटे संगने, उन्हां दे अंदर खतरनाक लुटेरे भी लुके रहिंदे, खतरनाक जानवर।

हाँ, तेरा ख्याल नहीं दे रखती, कल्ले नू छड़ के तुर जांदी है। तेरा ख्याल नहीं रखती तेरी मां, इसलिए मैं तेनू अपने कोल ले जाना। मां ने आख्या, पुत्र ए

इस गरीबणी दे घर आप चल के आ गया। तन है तू, तन है तू, मां दे मुंह चो निकल रहा है। मां वो कौन सी, तू जानदी है इस नूं? मां ने छाती नाल लाया पुत्र नूं, बैराग विच भिज के आखिया, पुत्र रहमतां दे मजस्मे, तन गुरु अर्जन दे पातशाह आप तेरे मुख विच जल पा के गए ने, तेनू दोबारा जान दे

परम सरकार योग गुरु बाबा जी दी पावन पवित्र हजूरी च बैठी साध संगत अज सचखंड निवासी संत बाबा ईशर सिंह नानकसर वाले महापुरश आप जी उन्हां दी बरसी मना रहे हो। साधुआं दी याद विच सदा मेले लग्या करदे हन, ते बख्शियां रूहां हुंदियां हन। थोड़ा समा तुहाडे दर्शन करने ने ध्यान दे के सुनियो, जेड़े सुन लैणगे ओ भी साध संगत पछताउणगे, जेड़े ना सुनणगे ओ भी पछताउणगे। विचार ही करनी है दुनिया दे विच महापुरशां दा आउणा। साध संगत जिवें लोहा लोहे तों बणियां चीजां विच कोई फर्क नहीं हुंदा, बंतर दा फर्क हुंदा, लोहा भी लोहा हुंदा, लोहे तों बणियां चीजां भी लोहा हुंदियां ने। जिवें लक्कड़ तों बणियां चीजां ते लक्कड़ विच कोई फर्क नहीं होया करदा, वेखण दा फर्क हुंदा। जिवें पाणी ते पाणी तों बणियां लहरां विच फर्क नहीं हुंदा, प्रेमियों समुंदर लहर मारदा, छल मारदा समुंदर दी छल, फिर समुंदर दे विच ही खत्म हो जांदी है। जिवें समुंदर ते समुंदर दीयां लहरां विच कोई फर्क नहीं, वेखण दा फर्क हुंदा। जिवें सोना ते सोने तों बणियां चीजां विच कोई फर्क नहीं होया करदा, बंतर दा फर्क हुंदा, वेखण दा फर्क हुंदा। इवें बाबा ईशर सिंह ते अकाल पुरख च कोई फर्क नहीं सी, वेखण दा ही फर्क सी। प्रेमियो अज जिन्हां संतां दी बरसी मना रहे हो, याद मना रहे, बरसी तां असीं शरीर करके मनाउने आ भई संत चले गए। अग्ञानी पुरशां नूं ऐ हुंदा भी संत चले गए, ज्ञान नूं इन्ने साल हो गए। अज दास अखबार च पढ़ रहा सी 25 साल हो गए शायद, 25वीं बरसी है। कौन कहिंदा महापुरश चले गए? महापुरश तां हाजर नाजर बैठे ने। बोलिया रब तैथों वख नहीं पर वेखण वाली अख नहीं। हुण अन्ने नूं किहड़ा आखे भी, जे अन्ने नूं कहीए भी दुनिया बड़ी सोहणी है, अन्ना जे ना मन्ने, अन्ना कहे दुनिया तां सोहणी है ही नहीं, उत्थे की दलील देईए। दुनिया ते फुल ते बड़े ने पर गुलाब दे नाल दी सुगंधी नहीं मिलदी। संसार ते महापुरश ते बड़े ने पर बाबा आनंद सिंह वर्गे, बाबा इस तों अगे चलो बाबा महाहरनाम सिंह पुच्चो मंडी वाले महापुरश, उन्हां वर्गे बाबा ईशर सिंह जी नानसर वाले महापुरश, इन्हां वर्गे महापुरशां दा मिलना साध संगत जी बड़ी मुश्किल है। दुनिया ते लकड़ां ते बथेरियां ने पर बामन चंदन दी लकड़ी दा मिलना मुश्किल है। संसार ते पानी ते बड़े ने पर गंगा जल दी महानता अपनी वखरी है। सारे पड़ो ना कोई होया ते ना किसे होना, मेरे प्रीतम वर्गा कोई रसना रह ना जाए। फेरे गया नहीं जगत विच कोई

अपनी खलकत दी इन्नी वड्याई नहीं कीती जिन्नी वड्याई गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने कीती। मैं रान इत्थों तक कहता खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हूं करो निवास। किसी ने नहीं किया मेरा रूप।

निर्धन को पल ले, निर्धन को पल ले। पांच तरह का निर्धन पालना। पहला निर्धन पालना, गुरु का सिख दसवंध कढ़े। सारे झाती पायो, अगां अगां ज्यों प्रकरण आएगा, कोई माया का दसवंध नहीं कढ़ सकता। ए नहीं कि वह नहीं निर्धन पाल सकता, वह भी पाल सकता। ए अगे प्रकरण आणगे। जेड़े बंदगी वाले महापुरुष सारी जिंदगी जिन्होंने लेखे लाई होवे गुरु दे, वह भी निर्धन नूं किहड़े ढंग नाल पालदे ने, उन्हां दा पालना किन्ना क उच्चा है, असीं कितें पहुंच भी नहीं सकदे। उह अगां प्रकरण आउणगे। अज दा प्रकरण, पहला निर्धन नूं पालना, गुरु का सिख दसवंध कढ़े। सारे झाती पायो, इहदे विच कमजोरी ते नहीं। और दसवंध कढ़न तों बाद बड़ा सोच के ला ले, लाउणा किथे, किसे गुरुद्वारे दी कार सेवा लई देंदा है, वो भी गुरु नूं पहुंचदा है। लंगर लई देंदा है, वो भी गुरु नूं पहुंचदा है। अजकल तुहाडे चों कई बीबियां ककारां लई सेवा देंदियां, ककारां लई, ये भी गुरु नूं पहुंचदा है।

आज पूर्णमासी दा ए समा ते पूर्णमासी हो जिस दिन सर्दी बल्दी दुनिया नु तारन वास्ते मेरा धन गुरु नानक प्रगट होया करो अरदास भाई ते गुरु नु नेत्रां च विसाओ हिरदे ते विसाओ।

नाम अधारंग मजे ब्रह्म तार तत हर को उपजे राग सारंग उकडे तान तरंग रंग अत ज्ञान गीत बंदान चक चक रहे देव दानम मुन छक छक व्योम विमानम आत्म उपदेश पेश।

सोचता रह जाता है कि दुनिया की कोई वस्तु नहीं बाबा दीप सिंह दे दर तो जिदी झोली ना भरे। फिर सोचना वा कि बाबा दीप सिंह जी तुसी एक कलगियां वाले पातशाह दे सिख हो, ध्यान देना। वो गुरु किन्ना को पूरा समर्थ होएगा जिन्हें एक सिख नू इन्ना कुछ आख सकना। बाबा दीप सिंह जी ने कलगी वाले पातशाह दे मुबारक हथां चो अमृत छकिया। जत सत ते पहरा दिता है, सच ते पहरा दिता है, गुरु दी चाल ते